90.8 FM आणि आज आहे सोमवार, म्हणजे मंडे मंडे आणि मंडे. और ये मंडे वाली वाइब बड़ा अजीब सी होती है यार. मतलब मन करता है कि यार उठ जाए बेड से, लेकिन आत्मा कहती कि नहीं यार, नहीं उठना है. बट करे तो करे क्या, पापी पेट का सवाल होता है. सुबह उठकर अपने को अपने काम पर निकलना ही होता है. वैसे जाकिर खान का एक कोट है, वो कहता है कि यार जिंदगी में कुछ भी हो जाए, काम तो करना ही पड़ेगा. बाय द वे, ये आज के वक्त का एकदम सच है, ट्रूथ है, क्योंकि कुछ भी हो जाए भाई, काम तो करना ही पड़ता है यार. घर चलाने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए और अपनी जिंदगी संवारने के लिए काम तो करना ही पड़ता है. उसके सिवा कोई और चारा अपने पास है ही नहीं. आप सुबह सुबह देखिए ना एक चीज़ की, जब मैं ऑफिस आता हूँ ना, मैंने बहुत बार नोटिस किया कि बारिश हो, सर्दी हो, धूप हो, कुछ भी हो जाए, न्यूज़पेपर वाले ना तो सुबह 4 बजे से 5 बजे से अपने काम पे लग जाते हैं. रोड सफाई करने वाले लोग अपने काम पे लग जाते हैं, दूध वाले लोग अपने काम पे लग जाते हैं, सब कुछ लोग अपने अपने काम पर सुबह सुबह चले आते. मतलब सुबह का एक वक्त होता है जब लोग नींद से उठकर सबसे पहले प्रायोरिटी अपने काम को ही देते, क्योंकि भाई जिंदगी उसी से चलती है. सो आज है मंडे, और मंडे के दिन अगर ऐसे ख्याल आता आपके माइंड में भी आ रहे होंगे ना, यार मंडे आ गया, करे तो करे कि ऑफिस जाना है, भाई थोड़ा दर्द उठाइएगा और ऑफिस के लिए निकलेगा. क्योंकि आज आप ऑफिस पहुंचोगे तो क्या पता कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा हो भी जाए. इस उम्मीद में ऑफिस के लिए निकलना कि यार होप सो सब बढ़िया रहे. एंड मैं भी दुआ करूंगा कि आपके लिए आज आपका मंडे बेहतरीन तरीके से गुजरे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. सो बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर एंड स्टे ट्यून. All is well. Arte and Nanaka morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM.

0: पैसों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: और इस वक्त हम एक कहानी सुनते ताकि उससे आपको भी कुछ जिंदगी में मोटिवेशन मिले और कुछ सीखने को मिले। तो एक छोटा सा लड़का, नाम था आरव, छोटे शहर से था लेकिन सपने सबसे बड़े थे। सुबह वो 5 बजे उठता, अपनी बैग उठाता और साइकिल से 8 किलोमीटर दूर जाकर दूध की डिलीवरी करता। क्यों? ताकि अपने स्कूल की फीस भर सके। लोग कहते थे, तू थकता नहीं है क्या? आरव मुस्कुराकर कहता, थकता हूँ पर रुकता नहीं। मंडे हो या संडे, सपनों को छुट्टी नहीं मिलती। कभी बारिश में भीगता, कभी गर्मी में झुलसता, लेकिन एक दिन आया जब वही आरव, जिसकी जेब में कभी छुट्टे पैसे नहीं होते थे, स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल का एक स्पेशल गेस्ट बन गया था जहां वो पढ़ा करता था। क्योंकि अब वो एक इंजीनियर था एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े पोस्ट पर। और जब स्टेज पर उससे पूछा गया, ये सब कैसे किया आपने, तो आरव ने एक ही लाइन में जवाब दिया, हर मंडे को मैंने मौके की तरह देखा, ना कि मुसीबत की तरह। तो दोस्तों, मंडे से भागिए मत, क्योंकि हर मंडे आपके सपनों तक पहुंचने का एक सीढ़ी होता है। उसे चढ़िए, थकेंगे जरूर लेकिन पहुंचेंगे भी वहीं जहां आपको होना चाहिए। चलो फिर इस मंडे को थोड़ा खास बनाते हैं और मंडे मोटिवेशन में खुद को भी मोटिवेट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, लेकर आता हूं छोटी छोटी कहानियां ऐसे हर एक दिन। सो आपको ये कहानियों का सफर कैसा लगता है जरूर बताना, डीएम करना इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, और सुनते रहना
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

जिंदगी में हमें गिफ्ट मिल गए ना तो जिंदगी एकदम गुलजार हो ही जाती है। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। वैसे गिफ्ट आपको आसानी से नहीं मिलता है, कुछ स्पेशल दिन हो तो मिलता है या तो फिर कुछ जीतना पड़ता है तब उस प्राइस के रूप में आपको गिफ्ट मिलता है। तो वही गिफ्ट देने के लिए मैं आपके साथ आता हूँ यहाँ। सो देखो यार, मैं आपको एक छोटी सी पहेली सुनाऊंगा और आप मुझे इसका जवाब बताना। तो यही तो है आज का अपना गेम जिसका नाम है कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। और आज की एक मजेदार पहेली कुछ ऐसी है कि खुद कभी कुछ नहीं खाए लेकिन सबको खूब खिलाए। क्या है ये जल्दी बताए। फिर से एक बार दोहराता हूँ कि खुद कभी कुछ ना खाए लेकिन सबको खूब खिलाए, बताए ये क्या चीज है। सो जल्द से जल्द व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना जवाब दीजिए और गिफ्ट जीते। देर मत करे, जल्दी करे और सुनते रहे MGM 90.8 FM।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM ऑल इज वेल और अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगावकर मैम फ्रॉम MGM साइकोलॉजी डिपार्टमेंट HOD। सो मैम, मेरा आपसे सवाल आज ये है, अगर मैम किसी कलीग या फ्रेंड को ऑफिस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रगल करते हुए हम देखते हैं, तो हम उसे हेल्प कैसे कर सकते हैं?
1: सबसे पहला तो हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। और कभी कभी इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है, कोई भी पर्सन परेशानी में कंफ्यूज रहता है, तो हमें उनको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम हैं, हमसे शेयर करो। बिकॉज हम अच्छा होना भी कभी कभी सामने वाले के लिए प्रेशर बन सकता है। तो हम बड़े सटल तरीके से उनको ये बोल सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़े परेशान लग रहे हैं, तो अगर आपका मन हो तो हम बात कर सकते हैं। हमको बस इतना बोलना है, हमको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है कि बताओ, बड़े आप स्ट्रेस में लग रहे हो, बहुत टेंशन है, बता दो, आपको हल्का फील होगा हमको। तो ये चीजें ना प्रेशर क्रिएट करती हैं। और ये जब खुद होके अपने आप आपके पास आए बोलने के लिए, तुरंत हमको सजेशंस नहीं देने चाहिए। पहले शांति से, कामली, पीसफुली हमको उनको सारा सुन के लेना है। क्योंकि कभी कभी आधे से ज्यादा दिक्कतें जब कोई शेयर करता है अपने आप को, तभी उनकी दिक्कतें हल्की हो जाती है, कम हो जाती है। शायद सोल्यूशन शेयरिंग ही होता है बहुत सारे सिनेरियोज में। तो वी हैव टू बी अ गुड लिसनर, नॉन जजमेंटल, एंड वी शुडंट पुश द अदर पर्सन टू स्पीक अप।
0: सो ये सब बातें याद रखिएगा दोस्तों, और अपनी मेंटल हेल्थ को वेल रखिएगा और काम को काम तरीके से रखिएगा, उसको अपने पर्सनल लाइफ में मत लाइएगा, वरना आपकी भी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। तो बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।

सुपर हिट गानों के बाद आरजे अदनान आपके साथ आया है एंड वक्त हो चुका है आपकी फरमाइश का। सो आज गाने की फरमाइश आई है मयूर

0: आपला छत्रपती संभाजीनगर नक्कीच एक दिवशी प्लास्टिक मुक्त होईल, पण त्यासाठी तुम्हाला सुद्धा थोडी मदत करावी लागेल. और आप सोचोगे कि यार मैं क्या ही मदद करूं, सबसे सिंपल चीज क्या है पता है, खुद से तय कीजिएगा कि मैं प्लास्टिक यूज नहीं करूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा. इसके लिए करना क्या है, अब हम मार्केट में जाएंगे, कुछ सामान लाना है तो प्लास्टिक कैरी बैग तो लगती है, तो अवॉइड कीजिएगा वो कैरी बैग यूज करना. उसके बदले आप पेपर से बनी हुई एक बैग यूज कर सकते हो, या तो फिर अपने घर से साथ में एक बैग लेकर जाइएगा, सबसे इजी चीज वो है. और दूसरा है, जो प्लास्टिक के कप में आप चाय पीते हो वो भी मत पीजिएगा, किसी और कप में चाय पीजिएगा. ऐसे छोटे छोटे तरीके से ना तो आप भी इस पर्यावरण को बचाने के लिए मदद कर सकते हो, और आपके इस छोटे कदम से आप अपना शहर पूरी तरीके से प्लास्टिक फ्री कर सकते हो. और सबसे ज्यादा प्लास्टिक ना कैरी बैग वाला यूज होता है, तो अवॉइड कीजिएगा वो प्लास्टिक यूज करना. देखिएगा इस छोटे कदम से ना तो बहुत बड़ा बदलाव होगा, और ये खुद से बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा, अपने घर से कोशिश कीजिएगा, और देखिएगा कुछ वक्त के बाद अपना शहर पूरी तरीके से प्लास्टिक फ्री शहर हो जाएगा. एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम प्रशासन बढ़ा रहा है, और इस तरीके से अपना शहर प्लास्टिक फ्री हो रहा है. सो इतना छोटा काम कीजिए आप, और बाकी सुनते रहिए.
1: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधनपूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in. अटेंशन future researchers and innovators.
2: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Thus it's LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyasakram.
1: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
2: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906 7612 000.

ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज काम कम करते लेकिन चुगलियां ज्यादा करते हैं। कौन किसकी बुराई कर रहा है, कौन मीटिंग में शाइन करने के लिए किसका आइडिया ले गया, ये गेम सब जानते हैं। और हाँ, कई बार लगता है कि मुझे भी जवाब देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या तू लड़ने आया है या चमकने। ऑफिस में पॉलिटिक्स एक रियलिटी है, लेकिन तेरा फोकस रिएक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना होना चाहिए। बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे यार, लेकिन जवाब हमेशा काम देता है। जब तू शांत रहकर भी बेस्ट परफॉर्म करता है, वो सबसे बड़ा रिवेंज होता है। याद रख, तू काम करने आया है, वॉर लड़ने नहीं। और जो लोग शांत रहकर चमकते हैं, उनकी रोशनी सबसे तेज होती है। तो अगली बार जब कोई बैक स्टेप करे, तू बस आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुझे टॉप पर पहुंचना है और वहां कोई भीड़ नहीं होती, क्योंकि टॉप पर एक ही इंसान होता है। सो ये जो चुगलियां करने वाले होते ना, इन्हें उनका काम करने दे, बस तू इन पर फोकस मत कर। क्या है ना, इंसान को कोई चिढ़ा रहा हो, अगर हमने उस पर रिएक्ट किया ना, वो सामने वाले को और ताकत आती है, उसे लगता है कि यार इसे परेशानी हो रही है और इसके मजे लेने में मजा आएगा। लेकिन हम जब रिएक्ट करना बंद कर देते हो ना, तो अपने आप सामने वाला इंसान भी खामोश होता है, क्योंकि उसे तो पता चल जाता है कि यार इसको कुछ भी बोलो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, जो ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं और इसकी उसकी चुगली करते, इन्हें उनका काम करने दे। तू तेरे काम पर फोकस कर, क्योंकि टॉप पर पहुंचना है, और ऐसे लोगों से दूर रहे। इतना ही मैं कहूंगा। समझ मेरी बात को मेरी जान।

0: आपको पता है, आप ना तो मेरे साथ 24/7 भी कनेक्ट रह सकते हो। आरजी अदनान आपके साथ
1: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: देखो यार, शो में ना तो मेरी और आपकी मुलाकात तो होती है, को मुझसे कनेक्ट रहना है यार, कुछ बात शेयर करनी है, कुछ बताना हो, जो कुछ भी बातें करनी हो ना, तो अपना सोशल मीडिया तो है ना यार। सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है आरजी अदनान, इस नाम से मेरा पेज है। अब देखो, एंटरटेनमेंट के लिए ना तो पहले रेडियो यूज हुआ करता था, अब तो रेडियो तो है, उसी के साथ साथ आपको आपके हाथ में भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो सोशल मीडिया के जरिए हो ही जाता। और मेरे ना तो जो कुछ रील्स में बनाता हूँ ना, एंटरटेनमेंट वाले होते, तो आपका वहां पर भी ना तो मैं मनोरंजन करूंगा ही, चाहे फिर वो मिनी ब्लॉग हो, शायरी हो, कुछ फनी वीडियो हो, इन सब तरीकों से ना तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। तो एक काम कीजिएगा, अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, ले लिया क्या, लॉग ओपन कीजिए, इंस्टाग्राम ओपन करें, वहां पर सर्च करें RJADNAN अदनान, अदनान मत करो, बहुत से लोग ना तो मेरा नाम ही गलत लिखते, अदनान, अदनान नहीं हूं यार मैं, ज्ञानी आदमी हूं, RJADNAN ADNAN, ये मेरा इंस्टा आईडी है। वहां पर ओपन करने के बाद देखो यार, लेफ्ट साइड में ना तो आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, हाँ एग्जैक्टली वही वही, अब आपकी प्यारी सी उंगली से उसको क्लिक करो और मुझे फॉलो भी करो। और देखो, मैं और आप ना तो फिर 24/7 कनेक्ट रह पाएंगे। सो इंस्टा पर आने के बाद मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और वहां पर भी अपना मनोरंजन मैं जारी रखूंगा। सो फॉलो कीजिए और बाकी सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। All is well, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM।

0: हम सभी को गिफ्ट जीतना बहुत पसंद है, इस वजह से हम एक गेम खेलते हैं जिसमें मैं आपको पहली सुनाता हूँ। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो।
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और आज इस गेम के अंदर हमने पहली सुनी थी,
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी,
0: खुद कभी ना कुछ खाए लेकिन सबको खूब खिलाए, बताए ये कौन है। तो इसका एकदम सही जवाब है चम्मच। जी हाँ, चम्मच, जो खुद कभी कुछ नहीं खाता लेकिन हम सभी को बहुत कुछ खिलाता है। एकदम सिंपल सा इसका जवाब था। और इस सिंपल से पहले का जवाब दिया है हर्ष केदार ने। सो कांग्रेचुलेशन हर्ष केदार, आज आप विनर बन चुके हो। आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा इस सही सही पहली का जवाब देने के लिए। सो कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत। सो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे गिफ्ट जीतना है तो मेरे पहेलियों के जवाब देते रहिए और सुबह ठीक 7:54 पर ये पहलिया सुनते रहिए। और बाकी तो एंजॉय कीजिएगा अपना सुपर हिट वाला शो जिसका नाम है

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. RJ and the Nanaka morning show. Freshness live radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. आरजी अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि आरजी अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा डीएम के जी का इंस्टा पर, आरजी अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए एमजीएम 90.8 एफएम। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

0: सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: जागे श्रीमती जी, आंखें खोलिए.
3: क्या चाहिए?
2: अरे भाई, देर हो गई.
3: तो मैं क्या करूं?
2: कॉफी, कॉफी चाहिए.
3: कॉफी, कॉफी और मैं.

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है आपका सोमवार अच्छा गुजर रहा होगा। वीकेंड की मस्ती के बाद एक नया हफ्ता शुरू हो चुका है और अब धीरे धीरे शाम का सुकून भरा समय भी आ गया है। ऑफिस, कॉलेज या दिन भर के काम के बाद अगर आप घर लौट रहे हैं, ट्रैफिक में हैं या बस थोड़ी देर खुद के लिए समय निकाल रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ बिताइए। हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार गाने, अच्छी बातें, ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स। सोमवार को अक्सर लोग थोड़ा भारी दिन मानते हैं, लेकिन सोचिए हर नया हफ्ता अपने साथ नए मौके भी लेकर आता है। हो सकता है आज आपने कोई छोटा सा लक्ष्य पूरा किया हो, किसी की मदद की हो या बस पूरे दिन मेहनत की हो, और ये सारी बातें अपने आप में ही खास होती है। तो इस शाम खुद को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने पसंदीदा लोगों को एक मुस्कान भेजिए, आने वाले दिनों के लिए नई ऊर्जा जुटाइए। याद रखिए, एक अच्छी शुरुआत हमेशा बड़े बदलाव की नींव बनती है। अब वक्त है शानदार गाने का। गानों का सिलसिला जारी रहेगा, इसीलिए कहीं मत जाइए। अपनी फरमाइशें और मैसेजेस हमको भेजते रहिए, क्योंकि आपकी बातें ही हमारी शो की जान है। स्टेडियम टाइम जिम 94.8 FM साथ है, दो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। हम सभी चाहते हैं कि हमारा दिन अच्छा गुजरे, हम पूरे दिन एक्टिव रहे और हमारे पास भरपूर एनर्जी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छी शुरुआत का सबसे आसान तरीका क्या है? सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग समय बचाने के लिए नाश्ता छोड़ देते हैं। कोई सीधे ऑफिस भागता है तो कोई कॉलेज या अपने काम में व्यस्त हो जाता है, लेकिन सुबह कुछ खाने का समय ही नहीं मिलता किसी को। बट आपको पता है, दिन की शुरुआत खाली पेट करने से शरीर और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके शरीर को जरूरी होता है और एनर्जी भी देता है और आपके पूरे दिन को फोकस और फ्रेश महसूस कराता है। चाहे पोहा हो, उपमा हो, पराठा हो, फल हो या ओट्स हो, जो भी आपको पसंद हो, बस कोशिश कीजिए कि दिन की शुरुआत कुछ पौष्टिक खाने से हो। याद रखिए, सुबह का नाश्ता सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि आपकी सेहत में किया गया एक छोटा सा बदलाव है। जब आप अपने शरीर को सही शुरुआत देते हैं तो आपका दिन भी बेहतर बनता है। तो कल सुबह अलार्म के साथ एक और वादा कीजिए, जल्दी उठेंगे, खुद के लिए थोड़ा समय निकालेंगे और हाँ, ब्रेकफास्ट जरूर करेंगे। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन एमजी। साथ है तो बात है।

गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। आप सुन रहे हैं एमजीएम नाड़ी पॉनिट एफएम और मैं हूं मनीषा आपके साथ। ऐसे गाने हमारे दिल के किसी कोनों को छू जाते हैं और हमें प्यार, समर्पण और खूबसूरत यादों की दुनिया में ले जाते हैं। जब किसी रिश्ते में सच्ची मोहब्बत होती है तो उसे सिर्फ साथ रहने की बात नहीं होती बल्कि एक दूसरे की खुशियों में खुश होना और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना भी शामिल होता है। प्यार का असली मतलब शायद यही है कि किसी की मुस्कान आपकी खुशी बन जाए और उसकी तकलीफ आपको बेचैन कर दे। आज के आने वाले गाने भी कुछ ऐसी ही जज्बातों को बयां करते हैं। ये गाने हमें याद दिलाते हैं प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक खूबसूरत जिम्मेदारी भी है। इसमें वो अपनापन है जो दिल को सुकून देता है और भावनाएं हैं जो हर उम्र के लोगों को साथ में जोड़ देती है। कई बार कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से बयां होते हैं और जब इन्हीं एहसासों को संगीत का साथ मिलता है तो एक ऐसा गीत बनता है जो सालों बाद भी उतना ही ताज़ा लगता है। तो अगर आप भी किसी खास शख्स को याद कर रहे हैं या प्यार की उन खूबसूरत यादों में खो जाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। पेश है कुछ ऐसे गाने जो आपके दिलों को छू जाएंगे। ओनली ऑन एमजीएम नाड़ी पॉनिट एफएम, साथ है तो बात है।

0: दिन भर की भाग दौड़, काम की जिम्मेदारियां और लगातार व्यस्त रहने के बाद शाम का समय एक खास एहसास लेकर आता है। मैं हूं आरजे मनीषा और आप सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 FM। ऐसा लगता है जैसा पूरा दिन हमें एक छोटा सा तोहफा देकर जा रहा हो, सुकून का तोहफा। शाम हमें याद दिलाती है कि थोड़ी देर रुकना भी जरूरी है। ये वो समय है जब हम अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद से जुड़ जाते हैं। डूबता सूरज जैसे कहता है कि जो भी हो गया उसे यही छोड़ दो, आने वाले कल के लिए नई उम्मीदों को जगह दो। कई बार हम अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से दौड़ते रहते हैं कि छोटी छोटी खुशियां भी हमको महसूस नहीं होती, लेकिन शाम की ठंडी हवा, आसमान के बदलते रंग और अपनों के साथ बिताए कुछ पल हमें एहसास दिलाते हैं कि खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे पलों में भी छुपी होती है। तो दोस्तों, अगर आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा हो तो उसे यही छोड़ दीजिए, और अगर दिन अच्छा रहा हो तो उसकी खूबसूरत यादों को अपने साथ रखिए, क्योंकि हर शाम हमें एक नया मौका देती है मन को शांत करने का, मुस्कुराने का और खुद को फिर से ऊर्जा से भरने का। इस सुकून भरे एहसास के साथ अब समय है कुछ बेहतरीन संगीत का। तो आराम से बैठिए, मुस्कुराइए और इस खूबसूरत शाम का आनंद लीजिए। सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश।
3: For admission, contact 93717142 65 or visit www.mgmu.ac.in. Attention future researchers and innovators.
4: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Thus it's LLB nantar kara LLM, Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshi tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyasakram.
3: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
4: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 906761200.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। जिंदगी में हर दिन हमारे सामने कई तरह की बातें और हालात होते हैं। कुछ बातें हमें खुश करती है, कुछ बातें हमें परेशान भी कर देती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, नकारात्मक सोच किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी असफलता, किसी की आलोचना या कोई मुश्किल परिस्थिति हमारे मन में नेगेटिविटी भर देती है। हम बार बार उसी बारे में सोचते रहते हैं और धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन सच तो ये है, हर मुश्किल के साथ एक नया अवसर भी छुपा होता है। अगर कोई बात आपके मन को परेशान कर रही है तो उस पर रुकने की बजाय आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने अच्छे पलों को याद कीजिए, अपने सपनों पर ध्यान दीजिए और उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। याद रखिए, खुश रहना हमेशा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, नेगेटिव बातों और लोगों से दूर रहेंगे और अपनी खुशियों पर ज्यादा फोकस करेंगे। मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, अपने हर दिन को बेहतर बनाइए और ऑफ कोर्स नेगेटिव सोच को टाटा बाय बाय कह दीजिए एंड हमारे साथ बिताइए आपके सुनहरे पल। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात।

रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये सिर्फ आवाज नहीं बल्कि आपकी फीलिंग से भी जुड़ा होता है। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजीएम 90.8 FM। हर दिन हम आपसे बातें करते हैं, गाने सुनाते हैं और आपकी पसंद को अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में कोई बात होती है, कोई कहानी होती है, किसी अपने के लिए कोई खास संदेश होता है या फिर कोई ऐसा गाना जिसे आप हमारे शो में सुनना चाहते हैं, तो फिर इंतज़ार किस बात का। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय साझा करना चाहते हैं, कोई फरमाइश भेजना चाहते हैं या बस एक प्यारा सा हेलो कहना चाहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर करिए। मेरी इंस्टा आईडी है arjemanisha_, या तो आप हमारे ऑफिशियल एमजीएम रेडियो के पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होते हैं, उन्हें पढ़कर हमें पता चलता है कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा पसंद है और किस तरह हम आपके और ज़्यादा करीब आ सकते हैं। तो आज ही हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, हमें हेलो भेजिए एंड ऑफ कोर्स अपने दिल की बात हम तक पहुंचाइए। हो सकता है आपका मैसेज, आपकी फरमाइश हमारे अगले शो का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ये मंच सिर्फ हमारा नहीं आपका भी है। आपकी आवाज़, आपकी पसंद और आपकी बातें ही इस सफर को और खूबसूरत बनाती है। हम आपके मैसेज का इंतजार करेंगे। इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़े रहिए, बातचीत करिए और ये सिलसिला यूं ही जारी रखिए। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में बेहतर परिणाम चाहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ। दिस इज आरजे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 FM। हर कोई चाहता है कि उसका समय सही तरीके से इस्तेमाल हो और उसकी कोशिशों को अच्छा परिणाम मिले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बेहतर रिजल्ट्स की शुरुआत एक अच्छे प्लान से होती है? हफ्ते की शुरुआत में अगर हम कुछ मिनट निकाल कर अपनी पूरे हफ्ते की योजना बना लें तो कई काम आसान हो सकते हैं। कौन सा काम सबसे ज़रूरी है, किस दिन क्या पूरा करना है और किन लक्ष्यों पर फोकस करना है, इन बातों को पहले से ही तय करना बहुत ज़रूरी है। टाइम भी बचता है और ऑफकोर्स आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होते प्रोसेस में। जब हमारे पास एक साफ योजना होती है तो हम कम उलझते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उन्हें एक एक करके पूरा कीजिए और हर छोटी सफलता का आनंद लीजिए। यही छोटी जीत आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का रास्ता बनती है। याद रखिए, सफल लोग हमेशा ज़्यादा मेहनत ही नहीं बल्कि अपने समय और काम को बेहतर तरीके से मैनेज भी करते हैं। इसलिए इस हफ्ते एक छोटा सा संकल्प लीजिए, बिना प्लान के नहीं बल्कि एक स्पष्ट दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने सपनों को सिर्फ सोचिए मत, उन्हें पूरा करने की तैयारी भी कीजिए, क्योंकि एक अच्छी योजना सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अब इसे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं एंड ऑफ कोर्स सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: देखते ही देखते सोमवार की एक खूबसूरत शाम अब अलविदा कह रही है। आप सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 FM और मैं हूं आज मनीष आपके साथ। दिन भर की व्यस्तता, छोटी छोटी चुनौतियां और नए हफ्ते की शुरुआत के साथ हमने आज का दिन पूरा किया। सोमवार को अक्सर लोग थोड़ा मुश्किल मानते हैं, लेकिन सच कहे तो यही दिन हमें एक नई शुरुआत का मौका भी देता है। आज आपने जो भी काम किए, जो भी सीखा और जितनी भी कोशिश की, वो आने वाले दिनों की सफलता की नींव है। अब समय है इस शाम को एक मुस्कान के साथ अलविदा कहने का। जो बातें अच्छी रही उन्हें याद रखिए और जो बातें मन के मुताबिक नहीं हुई उन्हें पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि कल एक नया दिन है, नई उम्मीदें हैं और नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आज रात खुद को थोड़ा आराम दीजिए, अपने परिवार को अपनों के साथ कुछ अच्छे पल बिताइए और आने वाले कल के लिए खुद ही तैयार हो जाइए। एक शांत और पॉजिटिव सोच के साथ दिन का अंत करना भी उतना ही जरूरी है जितनी एक अच्छी शुरुआत करना। तो दोस्तों, सोमवार की शाम को यही कहते हैं अलविदा। उम्मीद है आपका पूरा हफ्ता खुशियों, सफलता और अच्छे पलों से भरा रहे। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। अब ले रही हूं आपसे विदा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन के हर पल को एंजॉय करते रहिए। साथ है तो बात।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। Attention future researchers and innovators,
3: MGM University is now inviting application for PhD admissions 2026 and 27. Tasech LLB nantar kara LLM Constitution, Criminal and Intellectual Property Rights madhe 2 varshe tar business madhe 1 varshacha vishesh abhyasakram.
1: If you are ready to take your academic journey to the next level, this is your opportunity.
3: Last date to apply 21st May 2026 and entrance exam 23rd May 2026. Apply now. Visit www.admissions.mgmu.ac.in/phd or call on 9067612000.

0: Adnasi Baat with RJ Adnan. Only on MGM 90.8 FM. Saath hai to baat hai.
1: किसी ने मुझसे पूछा कि प्यार, मोहब्बत और इश्क में क्या फर्क है? तो जनाब, प्यार करना पड़ता है, मोहब्बत हो जाती है और इश्क, इश्क जो है नसीब, अगर नसीब में होगा

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
1: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: सर। वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: हर दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात।